0: बस एक औरत है हा, इहदे नाल तां मैं इकल्ला निपट लवांगा।
1: ओ ना निपटा सकिया, बल्कि मैं ही जल्दी नाल ओनू निपटा दिता।
2: वाह, लगदा है ए जंग करना जानदी है, पर मैनू नहीं हरा सकदी।
1: गुरु साहिब जी ने आप मैनू बल बख्शिया, मैं एक नू मार मुकाया ते नाल ही होर जने मेरे ते पारू हो गए ते नाल दे नाल ही उन्हां नू भी खत्म कर दिता। मैं एक पल लई भी गुरु नू नहीं विसारिया। मैं बयान नहीं कर सकती कि उह कहो जिहा महसूस हुंदा है जदों कोई इन्नी बिपता विच होवे ते अपने गुरु दा ध्यान धार रहा होवे। गुरु जी दी शक्ति ते किरपा हेठ होना मैं बस यह कह सकती हाँ कि मैं इन्ना जानदी सी कि इसका कोई फर्क नहीं पैंदा जो मेरे नाल हो रहा है। मैनू महसूस होया कि मैं इकली नहीं हाँ। मैं चारे पासों रोशनी नाल किरी हुई हाँ। अखीर वह मेरे ते हावी हो गए ते मैं निहत्थी हो गई। उन्होंने मैनू भी सुलगदी हुई अग विच सुट दिता। मैं अंत तक लड़ती रही, फिर मैं अपने आप नू इस मंडल विच पाया। गुरु साहिब पहला तो ही इत्थे सन, मेरा इंतजार कर रहे सी अपनी निगी गलवकड़ी नाल।
3: मैं हुण देख सकती हाँ, दुनिया नू लगता है कि तुसी बड़े दुख दा सामना करता, पर तुसी ता कुछ होर इसदे बिल्कुल उल्ट महसूस किता।
1: हुण तुहानू सब समझ आ गया ते तुहाडे नाल भी यही गल है। जदों तुसी गुरु पिता जी नू पुकारिया तां तुहानू पता ही नहीं सी कि तुसी की करना है, क्योंकि तुसी अपने आप नू असमर्थ समझिया। हुण तुहानू किवें दा महसूस हो रहा है?
3: मैनू एवें लग रहा है कि मेरे कोल दुनिया दी सारी शक्ति होवे।
1: ए शक्ति गुरु दे पासों ही प्राप्त हुंदी है। साडे नाल अपना मेल जरूर रखियो सिखी विच रह के।
4: उदो जिंद कौर गुरु गोबिंद सिंह जी दे सुपुत्रां नू अपने सामने प्रकट होंदे देखती है। उन्हां दे पिछे होर भी काफी शहीद सिंह हन।
5: तुहाडी सच्ची शरदा दे पलां विच असीं तुहाडे नाल हां ते तुहाडे लोड़ दे वेले असीं तुहाडे नाल खड़ांगे। कदे लुकियो ना, दिखा दो दुनिया नू कि तुसीं कौण हो।
3: मैनूं नहीं लगदा कि मैं दोबारा करजी दरांगी।
5: हा हा हा, शाबाश। पर जे तुहानूं कदे डर लगे भी, उदों समां है योधियां दीआं वारां गाउण दा।
3: अच्छा, ओह कीड़ी वार है?
5: साडे कोल बहुत सारियां वारां ने।
1: मैनूं लगदा है इस समें ए वार साडे गाउण दे लई बिल्कुल ठीक है।

0: Oh, that was a really good story. You want to listen to another one? Whenever we take a trip, we listen to SeekNet stories in the car. You can get CDs at SeekNet.com/stories.
1: आप सपना दा निक्की जी कौर जिंद दे जीवन विच जी आया नू। अज जिंद कौर दा उस दिन नवे स्कूल विच पहला दिन है। वो बस निकलन तो पहला अपने सवेर दा नितनेम कर रही है। वो सोचती सी कि अज सब कुछ ठीक रहेगा, पर जिंदगी एनी सौखी नहीं। जिंद कौर तुहानू एक आम जी कुड़ी जरूर लगेगी, पर वो आम दी परिभाषा तो कितने दूर है। जिंद कौर इन्ना पाठ करती है, इन्ना नाम जपती है कि सचमुच उसके कोल रिद्धियां सिद्धियां हन कि वह दूजे लोगों विच सफर कर सकती है।

0: इस लिए मैं वाहेगुरु जी नू कहा कि तुसी मैनू मार्ग दिखाओ। आप जी दी की कहानी है?
1: बीबी शरण कौर गंभीरता नाल जिंद कौर दी अखां विच देखते हन ते गल शुरू करते हन।
2: मैं जंग दे समय जिउंदी सी।
1: जिंद कौर हुण अपने सामने अपनी नवी सहेली दी जिंदगी इस तरह देख सकती है जिवें कि वो टीवी ते आ रही होवे।
2: जदों मैं 16 सालां दी सी उदों गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर छड्डिया सी ते दुश्मनां दी फौज ने निश्चा कर लिया सी कि वह सानू सिखां नू इस धरती तों मिटा देणगे अते गुरु साहिब जी नू भी मार देणगे।
3: खत्म कर दिओ इन्हां नू।
2: गुरु जी उन्हां दे वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी ते बाबा जुझार सिंह जी अते कुछ दर्जन खालसे नेड़े दे एक शहर विच जा पहुंचे। वो सब एक किले विच सन जिसका नाम सी चमकौर। अते शाही फौजां जिन्हां विच लखां दी गिणती विच सिपाही सन उन्हां ने किले नू चारे पासों घेरा पाया होया सी। ए सब अग दे समुंदर विच शांति दे टापू वांग जापदा सी।
4: सत श्री अकाल।
2: पंजां दे समूह विच खालसा अपने गुरु अगे शहीद होण दी दात दी बेनती करदा है।
5: गुरु साहिब जी अगली सेवा साड़ी लगाओ जी।
6: सानू शहीदी दी दात बख्शो जी तां जो असी इस जीवन दे असल मंतव धर्म दी जंग खातर लड़ सकीए ते फतेह प्राप्त कर सकीए।
2: फिर गुरु साहिब ने कहा तुहाडे उपर बेअंत किरपा है, एक खिण लई भी डरियो ना ते तुसी सीधा गुरु नानक दी चोली विच जा वसोगे। ध्यान रखियो कदे भी पिठ नहीं दिखाउणी। जिवें मीह दा पानी तेजी नाल किसे ताल च डिगदा है तिवें खालसा बेखौफ मैदान विच उतरिया ते अकाल पुरख विच समा गया। उन्हां दीआं आत्मा स्वर्गां विच इदां चलिया गईआं जिवें एक चिड़ी आकाश विच। मेरा हिरदा इह खूबसूरती देख गलबा गया। मैं इही अरदास करदी रही कि मैं भी उन्हां वांग ही हो जावां। मेरी सिर्फ एक इच्छा सी उन्हां नाल किले विच होना। मैं अकाल पुरख नाल वादा कीता सी कि मैं भी इन्हां वांग निरपै होवांगी। हे मेरे पिता जी गुरु गोबिंद सिंह जी, मैं केवल एक पासे बैठ के ये सब नहीं देख सकती। कृपा करो मैनू भी अपने पुता वांग शहीदी दी दात बख्शो जी। मैं अपने अंदर एक कोमल जिही आवाज़ सुनी। मैनू तुहाडे उत्ते माण है मेरी प्यारी धीए, तैयार रहो तुसी मैनू छेती ही मिलोगे। मैं जानदी सी वो आवाज़ किसदी सी। मैनू इउं महसूस होया जिवें मैं पूरी दुनिया की राणी होवां। गुरु पिता जी ते कुछ सिख जो रह गए सन दूजी थां कूच कर गए। दुश्मन उन्हां नू कदे भी फड़ ना सके। अंत विच बेअंत खालसे जंग दे मैदान विच लड़दे हुए शहीदी मंडला विच पहुंच गए। मैनू उदों ही पता लगा कि मैं हुण की कर सकती सी। मैं उन्हां शहीदां दी देह नू सत्कार सहित अगन भेट सकती सी। कोर हनेरा सी ते बहुत ठंड भी सी, पर तां वी मैं लक्कड़ इकट्ठी करके लियांदी। इह बहुत औखा काम सी मगर गुरबाणी ने मैनू ताकत बख्शी। एक एक करके मैं अपने भरावां दी देह चुक के लकड़ां उत्ते रखती गई।
0: वाह, ओ तां बहुत भारी होणगे, तुसीं किन्ने ताकतवर हो। पर मैं कुछ पुछना चाहुंदी हां। जेकर तुसीं चिखां नूं अग लाओ ते पांबण नहीं मच जाएगा, की ये देख के दुश्मन वापस आके तुहानूं फड़ नहीं लेगा?
2: हां जी, मैं जानती सी कि वह दोबारा मैनू मारन लई वापस जरूर आउणगे, पर मैं निरभय रहण दा वादा कीता सी अते ओ वादा निभाउण दे लई मैं यही कर सकती सी कि अपने भरावां दी सेवा करके उन्हां नू ओही मान दे सकां जिहो जिहे बहादुर जोधे ओ सन। दरअसल जिंद कौर जी, असी अपने दिल दे अंदर सब जानदे हाँ कि सही की है, भावें ओह दुनिया नू नहीं दिसदा। साडी आत्मा ओहनू पहचानदी है। एक डरपोक दी जिंदगी दा कोई मुल नहीं है, पर जीवन इत्थों तक कि मौत भी, जो कि हिम्मत नाल प्राप्त हुई होवे, बहुमुल्ली है।
0: ए केवल जीवन जीन दी गल नहीं, पर उस जीवन विच तुसी किन्नी हिम्मत ल्यांदे हो, एही मंतव है।
2: बिल्कुल सत, मैं ये नहीं फिक्र की कि मैं जिंदी हाँ जा मर गई। मैं जानती सी कि मैं सही हाँ। मैं चिखा नू जलाया अते सत्कार सहित पानी का पाठ किया।
7: जप जी साहेब एक ओंकार सतनाम करता निर्भो निर्वैर काल मूरत अजूनी सैभम।
2: मुगलां नू भावें ये ना दिसता होवे कि किन्नियां सोहणियां रूहां आजाद हो रही सन, उन्हां नू ये जरूर दिसया होवेगा कि अग किन्नी पख रही है।
5: ओह तेरी, तैनू ओह धुआं दिख रहा है?
3: हाँ, ते ओ चमकौर दी तरफ तो आ रहा है।
5: जेड़ा कोई सिखां नू मान देण दी हिम्मत करेगा साढ़े हथों मारिया जाए।
3: वापस मुड़ो, असी वापस जावांगे ते ए जो भी है ओनू मार मुकावांगे।

0: बस एक औरत है हाँ, इहदे नाल तां मैं इकल्ला निपट लवांगा।
1: ओ ना निपटा सकिया, बल्कि मैं ही जल्दी नाल ओनू निपटा दिता।
2: वाह, लगदा है ए जंग करना जानदी है, पर मैनू नहीं हरा सकदी।
1: गुरु साहिब जी ने आप मैनू बल बख्शिया, मैं एक नू मार मुकाया ते नाल ही होर जने मेरे ते पारू हो गए ते नाल दे नाल ही उन्हां नू भी खत्म कर दिता। मैं एक पल लई भी गुरु नू नहीं विसारिया। मैं बयान नहीं कर सकती कि उह कहो जिहा महसूस हुंदा है जदों कोई इन्नी बिपता विच होवे ते अपने गुरु दा ध्यान धार रहा होवे। गुरु जी दी शक्ति ते किरपा हेठ होना मैं बस यह कह सकती हाँ कि मैं इन्ना जानती सी कि इसका कोई फर्क नहीं पैंदा जो मेरे नाल हो रहा है। मैनू महसूस होया कि मैं इकली नहीं हाँ। मैं चारे पासों रोशनी नाल किरी हुई हाँ। अखीर वो मेरे ते हावी हो गए ते मैं निहत्थी हो गई। उन्होंने मैनू भी सुलगदी हुई अग विच सुट दिता। मैं अंत तक लड़ती रही, फिर मैं अपने आप नू इस मंडल विच पाया। गुरु साहिब पहला तो ही इत्थे सन, मेरा इंतजार कर रहे सी अपनी निगी गलवकड़ी नाल।
3: मैं हुण देख सकती हाँ, दुनिया नू लगता है कि तुसी बड़े दुख दा सामना करता, पर तुसी ता कुछ होर इसदे बिल्कुल उल्ट महसूस किता।
1: हुण तुहानू सब समझ आ गया ते तुहाडे नाल भी यही गल है। जदों तुसी गुरु पिता जी नू पुकारिया ता तुहानू पता ही नहीं सी कि तुसी की करना है, क्योंकि तुसी अपने आप नू असमर्थ समझिया। हुण तुहानू किवें दा महसूस हो रहा है?
3: मैनू एवें लग रहा है कि मेरे कोल दुनिया दी सारी शक्ति होवे।
1: ए शक्ति गुरु दे पासों ही प्राप्त हुंदी है। साडे नाल अपना मेल जरूर रखियो, सिखी विच रह के।
4: उदों जिंद कौर गुरु गोबिंद सिंह जी दे सुपुत्रां नू अपने सामने प्रगट होंदे देखदी है। उन्हां दे पिछे होर भी काफी शहीद सिंह हन।
5: तुहाडी सच्ची शरदा दे पलां विच असीं तुहाडे नाल हां, ते तुहाडे लोड़ दे वेले असीं तुहाडे नाल खड़ांगे। कदे लुकियो ना, दिखा दो दुनिया नू कि तुसीं कौण हो।
3: मैनूं नहीं लगदा कि मैं दोबारा करजी दरांगी।
5: हा हा हा, शाबाश। पर जे तुहानूं कदे डर लगे भी, उदों समां है योधियां दीआं वारां गाउण दा।
3: अच्छा, ओह कैड़ी वार है?
5: साडे कोल बहुत सारियां वारां ने।
1: मैनूं लगदा है इस समें ए वार साडे गाउण दे लई बिल्कुल ठीक है।